परम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासा है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवां।

के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई जो तव पावै सोई थी।

तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजयोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पाग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया।

आद अनिल अनाद असंभव, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकर एकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला,

गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दोता गावो हरि केरा मन जने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर

श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे खालसा जी साहब बोलना जी वाहेगुरु। आप जी दे सिखां दा मानीवा मत उची मत दे राखे हे आप काल पुरख वाहेगुरु जी। पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ गुरुद्वारा ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल प्यारे खालसा।

करना, अंग संघ के सहायता करनी, हर मैदान हर दीवान फतेह बख्शनी। सतगुरु जी आप जी दे सोने मंदरा ते लंगरा लई बेअंत संगतां वालों बेअंत भेटावां बेअंत रस्तावां लैके हाजर होए। सतगुरु जी जिस जिस भावना करके सेवक परिवारां ने सेवावां कीतियां सो सेवावां अपने दर ते प्रवान करनियां, सरबत दियां सुभ इच्छावां पूर्ण करनियां, सरबत दे कार्ज रास करने कार्जां सफलता बख्शनी। सतगुरु जी सरबत साध संगतां वालों पवित्र कड़ा प्रसादी देख हाजर है, देख आप जी दे दर ते प्रवान होवे, प्रवान हुआ।

श्री वाहे गुरु जी, हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,

क्या चाकरी जा जम्मे क्या कार सब कारण करता करे देखे वारो वार जे चुपे जे मंगे है दात करे दातार एक दाता सब मंगते

गगन दमामा बाजेओ परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहु न चाडे खेत। जय श्री

चरण गहो बकों सुब रसना दीजै प्राण अकोर। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, चरण गहो बको सुब रसना दीजै प्राण अकोर। रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो, हर सिंह

महा बिखया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी और अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी और अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सोहला सोहला राग गौड़ी दीप की मेला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयकर कीरत आखिए करते का होए बिचारो तित कर गावो सुहेला सिवरियो सुजन हारो तुम गावो मेरे निरभउ का सुहेला हो वारी जिस सुहेले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै ते सदाते कमण सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असी सुनिया जो हो वै साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देवन राग आसा महला पहला शेखर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एक होवे सनेक बाबा जयकर करते कीरत होए सो कर राख बधाई तोय रहो विश्वे चसियां कड़िया पैरां तिथि वारी माहो होवा सूरज कोर तनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मने आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहदा शब्द वाजंत पेरी रहो सहस तब नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नानम एक पद गंध बिन सहस तब गंध चलत सोई सब मैं जो जोत है सोए तिसते चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कमल मगरन लोभित मनो अन दिनो मोहे आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर पौ परया में साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर रिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है राव साकत हर साधना जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा है जो जो चला चुबै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है अर्जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पौ कंडा है अवनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोप कंड ब्रह मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख पर वड्डा है जन नानक नाम बदा टेक खैर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाट लो हर ला आ गए बसन सुहेला औद गटै दिन सरह नारे मन गुर मेर का सुवारे राव संसार विकासन से मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वे और सख्त कथा तिन जानी जाको आए सोई बेहा जो गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे।

युगता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी सुमाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी रेत ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक पुरथार है जो अंतर नाम सर्व मै पिख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निसतारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्सु परत्रे रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुवै नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ओ बैसनो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जानै असथूल चाहो वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चाहो वरना मैं जपै को नाम ज्यो ज्यो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करण करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरे ओ आप होए अनत तरंग लखे

महान को इह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी सोबा बनी नानक इह गुण नाम सुख मनी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक हुसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो ता इक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मै जे बुझै ताहों मैं कह न कोई

पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बहकरन विचार ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पातशाह प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरे तारे गुरसिख मन्ने नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गह मानु पंचे सोह दर राजानु पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करते कह करण नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत।

जी को गुजै हुए सचियार। तबले उपर किता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता हुए किता तान सवाल हो रूप किती दात जाने कौन कूद किता पसाओ एको को आओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख जप संख पाओ संख पूजा संख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास संख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मूल लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम संख लो असंख कह सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जे परमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन दे पानी धोतै उतर सुखे मूत पलीती कपड़ हुए दे साबून लईए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धुपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कार

पव है समुंद ना जानिए है समुंद सह सुल्तान गिरह सिद्धि माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफ्ति कहन न अंत अंत न करण दे न अंत

वारु अंत कारण किते बिललाहि, ताकि अंत न पाई जाहि, इहु अंत न जाने कोई। बहुता कही है बहुता हुए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, इवड़ ऊंचा हुए कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप आपु, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तुमाए। किते मंगह जोद अपार, किते अगणत नहीं विचार, किते खप टुटह विकार, किते लै लै मुकर पाहे, किते मूर्ख खाही खाहे, कित्या दुख भूख सदमार, ए पैदा तेरी दातार। बंद कलासी भाणै हुए, होर आख न सकै कोए, जी को कायक आखन पाए, ओ जाने जितिया मुँह खाए। आपे जाने आपे दे, आखे से पे के, जिसनु बक्से शिवसाला, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल ले जाए, अमुल पाए अमुला सुमाए। अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो मुला क्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण, आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है किते किते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुंजन सेव। किते आख है आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहि, इते किते होर करे, ता आख न सकै के। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जी को आखै भूल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, किते वावन हारे, किते राग परी स्यों कहियन। किते गावन हारे, गावह तोनू पौन पानी बैसंतर, गावह राजा धर्म द्वारे। गावह चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावह इंद्रिंदा सुन बैठे देव ते आदर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावै मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाए तेरे, अड़सठ तीरथ नाले। गावै जोद महाबल सूरा, गावै कहानी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। सी तुदनु गावै जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चेतनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सुदा सतसाहिब, साचा साची नाई है। पियो सी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख कीता आपना, जिव तिष्ठि वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाहो साहा पातशाहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शरम पत झोली, ध्यान की करै बिभूत। किंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जुमाती, मन जीत।

भुगत गया दया भंडारन घट घट वाचै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सदबरा साध संजोग विजोग दुकार चला वह लेखे आवह भाग आदेश आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै

अपाद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए भंडार जो किच पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक दूजी भव लख हो लख हो वह लख वेश लख लख गेड़ा

चार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिसा जोर कर विख है सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कछ पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाय धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड काया को कर्म केते पवन पानी वै संतर केते काण महेश केते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानु मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाही जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माए ताके रूप न कतने जाय ना उहे मरे न टागे जाय जिनकै राम वसै मन माए तिथै भगत वसै के लोग करे आनंद सचा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जिको कथै तंत अनंत तिथै लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला गंत पताओ भांडा पाओ अमृत ढाल घड़ियै शब्द सुची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे

सतबाणी ये सुनि मंथन हरिया हुआ रस न रस मानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सच सुनै नु पठाए हर जियो गुफंद रखे वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भाग नीक न दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नव नव नित्य स्तंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफंद रख कै वाजा पवन जाया इहो साचा सोहिला साचै कर गावो गावो ता सोहिला कर साचै जिथै सदा सत्य आवहि सचो त्यावहि जात दुभावे गुरमुख जिना बुझावहि सत सभना का खुसमै जिस बख्शे सो जन पावे कह नानक सच सोहिला सचै कर गावहि अनद सुनहु।

बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे के सां स्वासा नाल निभाई इन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के।

प्रभु को मिल बूच है। कोज शब्द मैं ले राज करेगा खालसा, रहे न कोई ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु।

माणिक करे ज्ञान गुर कहु बिचारे। काठो श्रीखंड सत गुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सत गुर चरण जिन परसिया से पस परे सुर नर पहे।

सुख फल हर जन पावहु। नानक कहे सुनहु जन पाई, सुख सोहेलड़ा हर त्यावहु। सुन हर गुण भिन्नी

गुरु ग्रीव निवाज तंत्र जमे सतगुरु जी पाव जी दर दे हाजरी पर दे हम बेअंत गुरु सिख माई पायो पाव जी दे बाण दे सत्कार जो बेअंत माया पेटा कर दे आप जन सारों सिखिदान प्रसाद जनक मां प्यार कृष्ण खजाने प्रभु ने सो आओ गुरु प्यारे सत्संग जी कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दिखीमा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग ने सकत्र सिंह जी उन्हों पासो अज दे श्री मुखाक दी विचार गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण करिए जी दस लो फते प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिव लाए। सतगुर पुछै सच संजम कमावै, हौ मै रोग तिस जाए। हर गुण गावै गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हौ मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलया सदा सुख पाईऐ, जे अन दिन हर नाम त्याय। महला तीजा, अंदर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीतै हर पुरख न पीजै, नित वेखै सुनै सुपाय। दूजै पाए जाए जग प्रबुद्धै, बिख माया मोह सुआए। इत कमाणै सदा दुख पावै, जम्मै मरै फिर आवै जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचै पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावै हर नामो गावै, हर नामो अंत छिड़ाए। पौड़ी जिना हुक्म मनायो, ते पूरे संसार। साहिब सेवन आपना, पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी, सच्चा शब्द प्यार। हर का महल तिनी पाया, जिन हों मैं विच्चों मार। नानक गुरमुख मिल रहे, जप हर नामा उरतार। श्लोक महला तीजा, गुरमुख ध्यान सहज धुनि उपजै। सच नाम चित लाया, गुरमुख अन दिन रह रंग राता। हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखै। गुरमुख हर बोलै, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त हुवै, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म हुवै तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्याया। महला तीजा, सतगुर जिना न सेवेओ, शब्द न लगो प्यार। सहजे नाम न त्याया, कित आया संसार। फिर जूनी पाईऐ, विष्टा सदा खुआर। कूड़ै लालच लगेआ, ना उरवार न पार। नानक गुरमुख उभरे, जे आप मेले करतार। पौड़ी भगत सच्चै दर सोह दे, सच्चै शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी, हर प्रेम कसाए। हर रंग रह सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए। सफल जन्म जिन गुरमुख जाते।

पौड़ी हर कै भाणै गुर मिले सेवा भगत बनीजे हर कै भाणै हर मन वसै सहजे रस पीजै हर कै भाणै सुख पाई है हर लाहा नित लीजै हर कै तख्त बहाली है निज घर सदा वसीजै हर का भाणा तिन मन्या जिना गुरु मलीजै श्लोक महला तीजा।

मन निर्मल हुवै हो मैं विचहु जाय। वाहु वाहु गुर सिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाहु वाहु करहै से जन सोहणे हर तिन कै संग।

हर जप हर निस्तार सलूक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जपना जिस सतगुर मिले तिस भाओ पवै सा कुलवंती नार सा हुक्म पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार ओह कुचजी कुलखणी पर हर छोटी पतार पै पै मलकटी है निर्मल हुवै शरीर अंतर प्रगास मत उत्तम हुवै हर जप गुणी गहीर।

सज्जन पाहुणे हो बरसना ता बरस कणा बाहुड़ बरसह काहे नानक तिन बलिहार।

दयाल मनहु ना विसारियन साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माही जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि पौड़ी अकुल निरंजन।

पतत पुनीत असंख होहे हर चरणी मन लाग। मन हठ तीर्थ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक भाग। पौड़ी

मिटे अंदेशया, तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन कै संग निहाल पापा मैल धोए, अमृत

महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार जोड़िया नानक लहरी लख सह आन डुबन दे नामा फिरी महला पंजवा बन पिहाव लै

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहेब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहब जी का आना पटना की धरती से साहब जी का प्रकाश होया ते कहते ने पीर भीखण साहब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। इहदे नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करते सन, तुर पे तुरे जा रहे हैं उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जो उत्थे पहुंचे, दर्शन की इजाजत मंगी, ते नाल कहंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए, ते दोवें कुजियां ते साहब जी ने हथ रखना किया। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा किया। बाएं गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आक दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

सोहित विचार प्रवान करना जी अगला जो प्रोग्राम है मान योग सकत्र साहब जी को आप जी श्रवण करो आप सारिया संगतान तन तन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दिया लख लख बधाइया लख लख बधाइया भुला चुका की छीमा फतेह सांझी करो जी वाह।

0: तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सोहेले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले। परम सत्कार जी सत्संग जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन सत्कार योग ज्ञानी मनमोहन सिंह जी जिन्होंने आप जी ने राग दरबार अंदर बड़ा रस पेना कीर्तन सरवण कराया है, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ आप जी ने अगला जथा आके कीर्तन द्वारा निहाल करेगा जी सत्कारयोग ज्ञानी हरभजन सिंह जी लहरी से उन्होंने जथा उन्होंने शब्द गायन करने जी। पहला शब्द है श्री राग का, कत्ती राग ने सो उन्होंने तीन राग उन्होंने अज सरवण कराने। श्री राग का शब्द है जी हरबिन जियो जल बल जाओ। ते अगे है जी दूसरा राग तुखारी राग चेत बसंत भला। उस तो अगला है जी शब्द बसंत राग का ए मन हरिया सहज सफाए। तो आओ उन पासों अपना राग दरबार अंदर इस तीन शब्द इलाही बाणी तिना रागा सरवण करिए बखरे बखर च। समा ठीक 8 बजे तक उन्होंने 8 बजे तो बाद भाई साहब अंकार सिंह जी तो 8:30 की समाप्ति होनी जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
1: हूँ मैं बेनती करता हाँ रंजन सिंह जी उन्होंने जत्था जी सारे स्टेज पे आ जी। ये जो शुक्रवार तो शुरू होकर कत्ती राग दरबार निर्धारित रागों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस में समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ये अज दो रागों में कीर्तन करेंगे राग बिलावल राग टोपी। भाई साहब का समा है 12:40 बजे तक। आओ प्यार नाल